0: East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

The very famous badminton song, Mohammad Rafi aur Asha Bhosle ki awaaz mein. It's playing for you on East FM, Kenya's premier Asian mix. Very good morning. Aap hain Nilufar ke saath on Lazy Lamhe. Yes, and how are you doing? Well, main 2-3 din ke baad on air aayi hoon. Actually, Vishal ne mera show handle kiya. I've been really unwell and my daughter as well. So this weather is not looking good. In fact, jab main doctors ke wahan gayi to itna zyada rush tha ke matlab every other person has this infection and cough. And so just be careful, make sure you're hydrated, make sure your immune system you're working on. I think aise mein vitamins lena, apna inner health ka khayal rakhna bahut zaruri hai. And coming back to the song, do you know it's a very famous badminton song hai na? और डायरेक्टर टी आर रामन्ना एंड कोरियोग्राफर्स एट जितेंद्र एंड लीना चंद्रवरकर सिंगिंग द रोमांटिक डुएट व्हाइल एंगेजिंग इन दिस वेरी एनर्जेटिक कोरियोग्राफ्ड बैडमिंटन मैच. तो जितेंद्र की जो एबिलिटी थी वर्चुअली एनी लोकेशन को डांस सेट बनाने की, वो उनका ट्रेडमार्क था उनके करियर का. कहीं भी वो डांस कर लेते थे और उनका एक यूनिक स्टाइल भी था डांस करने का. बहुत ही प्यारी टीम है इस गाने को लेके या फिल्म को लेके. आनंद

What a beautiful combination of Lata Mangeshkar and Mohammed Rafi Sahab. Lazy Lame pe aap hai Nilufar ke saath on East FM Kenya's premier Asian mix. So ye jo visual pairing hai on screen, looking very beautiful. Simi Garewal, you know, unka ek alag unique style tha aur wo hamesha rahega Vinod Khanna ke saath. In fact, film mein Hema Malini aur Randhir Kapoor bhi hain. Haath Ki Safai 1974 mein aayi thi ye film, but is gaane mein Vinod Khanna aur Simi Garewal. In fact, Vinod Khanna won the Filmfare Award for Best Supporting Actor for his role in this film, and it was the only Filmfare win and nomination for the movie itself. ठीक है ना? और बहुत ही beautiful structure है, composition है गाने का, और दूसरे गाने भी बहुत ही खूबसूरत है. In fact, the song is very famous. उनका एक जो आलाप है, you know, where she goes, लता मंगेशकर आलाप लगाती हैं. कल्याण जी, आनंद जी का music and everything just comes together and makes this beautiful tune from हाथ की सफाई. और चलो हम आगे बढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे. टीना, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. हाँ जी, मेरी तबीयत थोड़ी पहले से बेटर है, बट इट्स नॉट 100%. एंड as much as I was avoiding antibiotics, I had to start because it just got worse. So usse thoda fark pada hai, but I think home remedies help a lot. You know, garam pani peete raho, garam aise bhi. I think as I said earlier, we need to work on our immune system, because jis tarah se hamare halaat hai shehar ke, ek to weather to hai hi unpredictable. It starts raining, it's cold, it's hot at the same time, plus the dust. Hamare to pure parklands mein itna construction chal raha hai के क्या बताऊं, लाइक एवरी कॉर्नर देयर इज अ कंस्ट्रक्शन. सो दैट्स रियली अफेक्टिंग एवरीवन्स हेल्थ. सो वी कैन जस्ट प्रे एंड होप फॉर द बेस्ट. बट थैंक यू टीना फॉर सच अ ब्यूटीफुल मैसेज. आप भी अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे विद मी. दिस इज लेजी लम्हे विद निलूफर.

मोहम्मद रफी साहब का ये लेजेंडरी ट्यून, अगर आपका कितना भी मूड सड़ा हुआ ना हो या कुछ किसी ने आपका बिगाड़ दिया हो, अगर आप ये गाना सुनेंगे उस मोमेंट पे आपका ऑटोमेटिकली मूड ठीक हो जाएगा. दिस इज tried and tested many many times. I love this song and it's my most feel good song. Mohammed, isme bahut sare versions hain isko. I think Lata Mangeshkar ne bhi gaya hai, Manhar Udas ne bhi gaya hai, but jis tarah se Mohammed Rafi sahab ne khush ho ke you know gaya, maine unko live obviously nahi dekha ye gana gaate hue, but I can imagine him singing this song with this beautiful smile he used to always have on his face. maine jo bhi clips dekhe Mohammed Rafi sahab ke gaane ki, उनकी रिकॉर्डिंग्स की, उनके लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेस की, ऑलवेज अ स्माइल ऑन हिज फेस. जयश्री, आई एम फाइन, हाउ आर यू, हैप्पी संडे टू यू टू. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. नीला जी, थैंक यू सो मच. जैस्मिन हु इज ट्यून्ड इन फ्रॉम इंडिया. और भी मैसेजेस आए, आई विल शेयर ऑल ऑफ देम. और अमित आ गए अपना शेयर लेके हमेशा की तरह. थैंक यू सो मच अमित. आप कहते हैं मत छोड़ो मुझे, मुझे नफरत से डर लगता है. मत छोड़ो मुझे, मुझे नफरत से डर लगता है. मत आओ करीब मेरे, मुझे बिछड़ने से डर लगता है. और मुझे भरोसा है तुम्हारी वफाओं पर, लेकिन मुझे मेरे नसीब से डर लगता है. दैट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल. आई नो ये गुलजार साहब का शेर है. चलो हम आगे बढ़ते हैं. अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में. कीप इट ईस्ट एफएम. गुड मॉर्निंग लेजी लम्हे पे आप है निलोफर के साथ.

लावारिस फिल्म का ये गाना सुपर डुपर हिट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये गाना ऐसे लोगों पे सूट करता है जो दूसरों की जिंदगी में इतना ज्यादा अपनी लंबी सी नाक घुसाते हैं जो जरूरत नहीं है। अपना देखो ना, अपनी लाइफ देखो, अपना खुद का देखो, अपनी फैमिली देखो, दूसरों की जिंदगी में यू नो कहते ना वो फटे में पैर अड़ाना या एक ऐसी कहावत है मुंबई में, नाक घुसाने की जरूरत कि मतलब हमारी तो जैसे तैसे कट गई है, आगे भी कट जाएगी, तुम अपना देख लो तुम्हारा क्या होगा। जनाबे आली, रोजीना कह रही है आज लगता है तुम कुछ ज्यादा ही चाय पी के आई हो, एक से बढ़कर एक गाने। हाँ, मैं बड़ा वाला जो मेरा थर्मस है वो चाय पीकर लेकर आई थी, तो आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड माय टी, सो आई गेस दैट्स द मैजिक ऑफ चाय। और मैसेज आया किशन का, कहते हैं यू रिमेंबर सीइंग दिस फिल्म इन अहमदाबाद इन ओपन एयर थिएटर एंड इट वाज कॉल्ड ड्राइव इन सिनेमा।

0: East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: Khado di se baal, aur lagyo di se baal.
2: Khado na di se baal di, aur lagyo na di se baal. तो मैं तुझसे पूछूं ऐ सखी कैसे छूटे तन जड़ थोड़ो और नेर घणो ये ही इसको प्रमाण तू पी करत रहे ऐसे छूटे तन ऐसे छूटे।

निगाहां कातल ने दिलां नूं ठगदे आ साडा दिन विच नाम बोले रातां नूं जगदे आ कोई किथे मार करू भेती रग रगदे आ ओ तेरी जत्थे सोच मुके असी सोचण लगदे आ।